आप अपने डीजे मेटा देसी के साथ सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के कनेक्शन वाले गाने। इन सब गानों का कुछ ना कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है, सो कीप एंजॉयिंग।

ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कनेक्ट हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रहा है और इंडियन मूवी इंडस्ट्री में भी ऑस्ट्रेलियन इंडियन सिटीजन्स ने अपनी छाप छोड़ी है. पल्लवी शारदा जो रणबीर कपूर के ऑपोजिट कास्ट हुई इस मूवी बेशरम में. इंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम बेशरम.

फिल्म्स बनी जैसे कि घोसला का घोसला जो कि इंस्पायर्ड थी मूवी द कैसल से, मैड मैक्स ने इंस्पायर किया एक तमिल फिल्म यामाकिन खरडू को, ओ माय गॉड जो कि इंस्पायर हुई द मैन हू शू गॉड से, और टेलीफोन सॉन्ग वो पहला सॉन्ग था जिसमें कैंगरूज यूज हुए। स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा सॉल्ट लेक मूवी का जो कि एक कैनबरा बेस्ड इंडियन ऑस्ट्रेलियन ने फुल बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूस की है जो कि अपने में एक स्पेशल मेंशन है। तो अगले सेट ऑफ सॉन्ग्स आर फ्रॉम सच मूवीज, आई होप यू वुड लव देम एंड एंजॉय दिस नेक्स्ट सेट ऑफ सॉन्ग फ्रॉम द मूवीज इंस्पायर।

0: Enjoy.
1: आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और इसी तरह से आप सेलिब्रेट करते रहिए अपनी इंडियननेस और अपनी ऑस्ट्रेलियननेस एंड डोंट लेट ऑल द अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द पेरिफेरी अफेक्ट यू एंड कीप फोकस्ड. मैं एक और शो लेके आऊँगा स्पेशल अबाउट ऑल द अदर थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड. But for today, it's just about celebrating India's 79 years of independence. That is 80th Independence Day. So, jab tak hum milte hain, dobara apna khayal rakhiyega. Shubh Ratri, Shabba Khair, good night, and happy Independence Day.